भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Magic FM.
1: Hey, फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढीर छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा।

0: ये सब या व्यक्ति सोनी पोंग बलाव
1: ये मरिया व्यक्ति आसे कंपोंग पस बलाव
2: ये नरायण व्यक्ति जबरी
0: सेंग मोंगला एन आशिक एम
3: मौई नदीना
0: मौई नुंग मौई